0: directly into mothers' bank accounts, ensuring safe motherhood. With the resolve of Hamari Anganwadi, Hamari Zimmedari, the 9th Rashtriya Poshan Maah is being celebrated from 9th September 2026 to 8th October 2026.
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
0: कनेक्ट विद योर नियरेस्ट आंगनवाड़ी टुडे, बिकॉज हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.